0: पूर्व कर्म पंच कर्म सेवा
1: जानकारी का लागि
0: आयुर्वेद तथा बागमती कोरिडोर गोलीगढ़।

0: राइटर निरंजन प्रसाद बोस हजार दल अंठानवे चार एक छत्तीस एक सौ दो सौ बीस
1: किचन सामग्री आमा का भाड़ा बर्तन होलसेल कराईगौड़ा क्षेत्र में होम डिलीवरी व्यवस्था
2: ब्रदर्स किचन एंड गिफ्ट हाउस मुख्य

0: ही हाइलाइट्स को साथ में
1: सेतो छरितो र गुणस्तरीय सेवा को यो परिणाम
0: कृष्ण खर्चन एक्चुअल प्लेस
1: प्लेस जुगेडोरा बीपी चोक
0: सेवा लेख र छपाई सम्बन्धी सम्पूर्ण काम को लागि सम्पर्क 4 85 3 104

0: पर कथल पवन लाई गाछी पानी मिटली पर पर्क का सब सामन चैनी कतर जानी पाई
1: हमें कहा सफल चैनल गेट पुलिस निर्माण टेम्पल स्टैंड फलांग स्टील का वेलिंग घर निर्माण का लगी आवश्यक पड़ने ढील स्टील का संपूर्ण सामान हर खिलौना कुर्सी टेबल बेंच लगाए फाइबर गैस बाट उत्पादित फल पार्क एवं बाल बालिका का लगी आवश्यक पड़ने सामान उपलब्ध छ नागिला संपर्क 98 65 13 98 67 94 94 अब चिंता नलिनुहोस् उद्योग जहाँ गुणस्तर विश्वास सँगसँगै भेटिन्छ सम्पर्क 98 65 63 209 98 41 21 718 आज सम्पर्क गर्नुहोस् शाखा पसल दुलेगौडा वित्त बजार सामुदायिक विकास बैंक पछाडि यहाँ विवाह व्रत बन्ध पास्ने पिकनिक पार्टी भोजभतका लागि आवश्यक खसी र कुखुराका मासु पाइनुका साथै जिउँदो खसी बोका पूजाका लागि चाहिने बोका र लोकल कुखुरा पनि पाइन्छ साथै ताजा अन्डा सशुल्क र फ्रेन्च फ्राई चाहिएमा पनि हामीलाई सम्झ
2: मोबाइल 98 65 63 136 98 51 63 136
1: हाम्रो कार्यक्रम अरूको भन्दा राम्रो र विशेष हुनुपर्छ है फ्लेक्स प्रिंट बैनर होर्डिंग बोर्ड बनाने का साथ ही माया को चीनो कप मेजर प्रमाण पत्र बनाई पत्र पत्रिका पुस्तक कार्यालय का कागज पत्र परिचय पत्र रजिस्टर ब्याच स्कूल का बिल भरपाई पासबुक ब्रोशर कमसुक र विवाह का कार्ड तथा निमंत्रण कार्ड

0: अञ्जलीमी तपाईँले आफ्नो बौद्धिक क्षमता तथा शारीरिक स्फूर्तिमा कमी आउँछ। नियमित रूपमा हरियो सागपात खानुको साथै आइरन फोलिक एसिड जति नियमित रूपमा खाने गर्नुपर्छ। यो प्रक्रिया तपाईँ स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्यसँग नियमित रूपमा निशुल्क पाइन्छ। साथै अभियानको क्रममा विद्यालयमा समेत पाइन्छ।
1: प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय तनहुँको जनहितमा जारी सन्देश।
2: कहाँ जाने?
3: सिक्किम मयाम चिसापानीबाट काठमाडौँ, काठमाडौँबाट
2: मयाम चिसापानी, अनि बिचमा नजाने?
3: अब त हरेक दिन बिहान 8 बजे काठमाडौँ बस पार्कको दुस्री मलबाट मयाम चिसापानी र यताबाट बिहान 8 बजे काठमाडौँका लागि
4: हजुर, माइक्रो सुविधाका लागि सम्पर्क काठमाडौँमा होटल टाइटनिक प्रोपाइटर रामचन्द्र महत 98461678 र बुढी रोडा ढोल फर्दी छाम्बी दौराली छाँची हुँदै मकम चिसा पानीका लागि सम्पेज लज एन्ड रेस्टुरेन्ट प्रोपाइटर हरिचन्द्र महत 98352563।
5: पद्मश्री हस्पिटल एन्ड अलाइड साइन्सेस न्यू पोखरामा अब सबै प्रकारको उपचार सेवा सम्भव छ।
6: विशेषज्ञ डाक्टर विरोधन
5: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर डेला सिंह जोशी डाक्टर चुन्मय पुन
6: तथा पेट कमिटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास अधिकारी डाक्टर शंकर बराल
5: हडजौनी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर एजुमान साक्य उप प्राध्यापक डाक्टर पविन थापा र हडजौनी नशा रोग विशेषज्ञ तथा आर्थोस्कोपी सर्जन उप प्राध्यापक डाक्टर सुभाष गुरुङ
6: रोग विशेषज्ञ डाक्टर तेज बहादुर गुरुङ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि शेर्चन
5: न्युरोलोजिस्ट तथा मृगौला प्रत्यारोपण सर्जन सह प्राध्यापक डाक्टर प्रकाश छेत्री डाक्टर ध्रुजराज श्रेष्ठ
6: नाकान घाटी तथा थाइरोइड सर्जन सह प्राध्यापक डाक्टर विकास गुरुङ्गी डाक्टर विशेषज्ञ डाक्टर अस्पताल बाटले
5: रेडियोलोजिस्ट प्राध्यापक डाक्टर मनिष किरण श्रेष्ठ डाक्टर सुमिरन श्रेष्ठ
6: एन्टिबायोलोजिस्ट डाक्टर भूपेन्द्र कुमार तिराथन प्लास्टिक एन्ड कस्मेटिक सर्जन उप प्राध्यापक डाक्टर तेज गिरी
5: एनेस्थेसियोलोजिस्ट उप प्राध्यापक डाक्टर विशाल गुरुङ डाक्टर सुस्मिता गुरुङ
6: जनरल सर्जन प्राध्यापक डाक्टर नरेन्द्र विक्रम गुरुङ सह प्राध्यापक डाक्टर देवेन्द्र श्रेष्ठ
5: फिजिसियन डाक्टर अनमोल पौडेल र मनोचिकित्सक डाक्टर मानकाजी थापा मगर
7: वार्ड आईसीयू जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सेवा पोस्टेक सेवा फिजियोथेरापी इंडोस्कोपी लैप्रोस्कोपी इको टीएमटी हाउटर पीएफटी यूरोप्रोजेक्ट्री डायलिसिस सेवा व 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा साथ ही प्रति विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा सेवा प्रदान करने को जानकारी कराद
6: 24 घंटा सेवा उपलब्ध छोटे हॉस्पिटल एंड सेवा नंबर।

केवा कविता सुन चाँदी पसल भवन सुनका आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन कदर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो कर गहना नया गहना सुन्द पाठ फिर प्रोपाइटर बाजी सुनार मोबाइल।

0: होस्ट चंद्रन स्टेशन प्रिंटेड ब्लॉग जहाँ दोस्त पर विश्वास तुम से भी तो था
1: उचित मूल्य में साथ ही हमी कहा लिखी
0: छोटो सीरा

को अपने भवन में पटावरा सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी गर्व बनाए राष्ट्रीय अनुसार का पत्थर तीन था अगर अनुसार का गहना तैयार गर्व के साथ ही

उसके बाद मैंने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल टूटा तो फिर दिल लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहा है जमाने में मुझसे बेहतर, जिसके लिए मैंने जमाना छोड़ दिया।

देखा नहीं जाता। मैं जल्दी किस बात की थी कि चला गया उनको तो नजर के अंदर भी नहीं आता। मुझे किसकी बात याद आ गई है, दूर जाने लगे हाथ मेरी हथेली में था, उसको क्यों याद आ

0: ਪਲੀਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ 9968761
1: आदिवासी हॉस्पिटल एंड अलर्ट साइंसेज मेरठ पोखरा में
2: अब
1: जन स्वास्थ्य क्लिनिक गुरु रोड में।

0: Esta nivel.
1: वर्तमान सर्वसम्मति अस्पताल पोखरामा कार्यरत वरिष्ठ पेट मुटु
2: छाती तथा सुगर रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजेन्द्र पौडेल
0: वरिष्ठ नाक कान घाट तथा वृद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर

0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टुडियो साइड अहिले बिहानको 5 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में मनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301

0: छुट्टै खाए साह्रै मिठो पकाए त ट्वाक्कै एक पाकेटले पेट भरिने के हो भन प्वाक्कै
1: यी यो हो बोनस चाउचाउ।